अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से रابطہ कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।

के अंदर रखे। फिरौन जो आज निशान इबरत है, फिरौन के जुल्म और जबर को कुरान ने ज़िक्र किया है, उसके जुल्म और जबर को, कत्ल और गारत को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी और उसकी कौम की तरफ हज़रत मूसा अलैहि सलातु व सलाम को नबी बनाकर मबऊस फरमाया। तफसीर कबीर के अंदर ये ज़िक्र है कि फिरौन ने अभी खुदाई का दावा नहीं किया था। खुदाई का दावा करने से पहले उसका एक मकान था और उसका जो मरकज़ी और बैरूनी दरवाज़ा था उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी। जब उसने खुदाई का दावा किया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको हक की तरफ बुलाया, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का दर्स दिया, कत्ल व गारत, फितना व फसाद से रुक जाने की तबलीग फरमाई, हदायत पर आने के लिए उसकी रहनुमाई की, हक को सच की तरफ बुलाया और उसने हक को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसके हक में अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, उसके हक में बददुआ की, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही आई, फरमाया ए मूसा, ये फिरौन है तो इस काबिल इसको हलाक कर दिया जाए, लेकिन इसके घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखी है जिसकी वजह से वो आज़ाब से बचा हुआ है। यही वजह है फिरौन पर जो आज़ाब आया उसके घर में आज़ाब नहीं आया। जब वो घर में मौजूद था उस वक़्त आज़ाब का नज़ूल नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको घर से निकाल कर बहरे कुलज़म की मौजों में डुबो कर हलाक किया, तबाह व बर्बाद किया। तो अंदाज़ा करें, गौर करें, एक काफिर का घर बिस्मिल्लाह की वजह से आज़ाब से बच सकता है, तो अगर कोई मुसलमान बिस्मिल्लाह को अपने दिल में बसा ले, अपनी ज़ुबान पर लिख दे, उठते और बैठते हुए, खाते और पीते, चलते और फिरते हुए, हर लम्हा और हर लहजा बिस्मिल्लाह पढ़ने को अपना मामूल बना ले, तो उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से कितनी रहमतों का नज़ूल होगा, कितनी बरकतों से वो फैज़ याब होगा, उसकी ज़िंदगी में अमन और सुकून आएगा। अगर वो बीमार है, बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर वो दुआ इस्तेमाल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको बिस्मिल्लाह की बरकत से उस दवा के इस्तेमाल से शिफा अता फरमा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर दीनी काम हो या दुनियावी काम हो,

बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।

0: शायरी और जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.